0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
3: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
2: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
4: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल। दोस्तों वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।
5: इस वक्त आप
4: दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, नमस्ते।
0: नमस्ते मैम।
1: नाम क्या है आपका?
0: अंजना शर्मा।
1: अंजना जी, कहाँ से बात कर रही हैं?
0: मैम गंगापुर सिटी से। मैम
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाने के बोले, हम दम की कसम, हम दम के लिए।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिएगा ना।
0: थैंक यू मैम।
1: वेलकम।

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मोहम्मद हारून बोल रहा हूँ, ग्राम अकबरपुर, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश।
0: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: उस फिल्म का नाम है अफसाना प्यार सा, याद तेरी आती है।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ जी मैम, नाम क्या है आपका?
1: जी शहनाज।
0: कहाँ से बात कर रही हूँ?
1: संजय कॉलोनी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे मैम?
1: कभी तुम्हें फीमेल वर्जन है, शेरशाह मूवी का सॉन्ग है, ठीक है?
0: कौन सा मैम?
1: कभी तुम्हें।
0: कभी तुम्हें
1: जी, फीमेल वर्जन।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
1: थैंक यू।
0: वेलकम।
2: अगली बार लौटेगा ना।

0: कहाँ से बात कर रही हूँ?
1: जम्मू कश्मीर।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मैडम जी।
0: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्कार मैम।
1: सर नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम रूपचंद गोयल, जिला बाड़मेर, राजस्थान।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: आज गीत सुना, पिक्चर का नाम है लम्हे, गीत के बोल है मेगा रे मेगा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं, फरमाइश करिएगा ना।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या?
2: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: मेरा नाम पायल जगा है।
1: कहाँ से बात कर रहे हैं?
2: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: यार का नेम चले बेबी।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम रेखा शर्मा है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: सिटी मिर्जापुर से बोल रही हूँ।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: कैसे हो तुम, कैसे हो तुम, कैसे हो?
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ही गाना।
2: कैसे हो तुम? मैं भी

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 10:28 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग नंबर है 6378024475। पुनः प्रयास करें 6378024475 पर कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हेलो
1: सर नमस्ते, नाम क्या है आपका?
0: मैं कहाँ है लोगो मस्जिद के पीछे से?
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: हाँ है मुझे दिन रात सताने वाली।
1: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: हेलो।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रिको एरिया।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गराजा परदेसी।
0: बिल्कुल सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: योगेश जांगड़े।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: छत्तीसगढ़।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: फिल्म है जुनून गीत के बोल है मिलते मिलते हंसी वादियों में।
1: कौन सा सर?
0: मिलते मिलते ए हंसी वादियों में हम खो गया। जी जी
1: जी
0: जी धन्यवाद।

0: हेलो
1: सर, नमस्ते।
0: नमस्ते जी दीदी, गंगाधर सामंकर कुंडलवाड़ी नांदेड़ महाराष्ट्र से बात कर रहा हूँ।
1: हाँ सर, और कैसे हो?
0: बहुत बढ़िया दीदी, आप कैसे हो?
1: हाँ ठीक है। मौसम कैसा है उधर का?
0: बारिश हो रही है आज।
1: हाँ सर, बारिश का मौसम इधर भी हो रहा है।
0: जी जी जी, इस मौसम में अपन लोफर फिल्म का गाना सुनना है, ये मौसम भीगा भीगा है।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत
0: धन्यवाद।

0: 96 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6। रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

नमस्कार दोस्तों, रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का मनोरंजन का सरताज आपके अपने ऋषि मीना के साथ हाजिर है। स्टूडियो नंबर 6378024 75। आप गाने की फरमाइश कर सकते हैं, शुभकामनाएं दे सकते हैं या बस बात कर सकते हैं। लाइव सुनने के लिए रेडियो डीएस 89.6 ऐप डाउनलोड करें या यूट्यूब पर radios_gg सर्च करें। क्या चल रहा है आज, कौन सा गाना बजवाना है, बोलिए, हम तैयार हैं।

0: हेलो
1: नमस्कार,
0: नाम क्या है आपका?
1: बाबू का।
0: कहाँ से बात कर रही?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: हम इंतजार करेंगे कयामत तक।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगा।
2: हेलो,
3: हाँ जी नमस्कार
2: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
3: शहजाद खान पुराने निजाम।
2: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो
3: सर, नमस्ते।
2: नमस्ते जी, चौधरी निवेदन कर रहा हूँ भाभी जी।
3: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: गाना है घटा सावन की हटा।
3: घटा सावन की हटा
2: जी।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
2: थैंक

0: पार्लर।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: शीशा सॉन्ग।
1: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: किसे पाछे इतने ना फिरे जितने तेरे पीछे भटक रहे हैं।
1: हेलो,
0: क्या छाती?
1: हाँ जी, नाम क्या?
0: आई लव यू।
2: नाम तुलसीराम मीना, ग्राम पीलूखेड़ा से है।
1: सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: टाइटल सॉन्ग है बहन जी, आई मिलन की बेला देखो आई।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बहुत बहुत धन्यवाद मेरी बहन, आपका
1: वेलकम सर।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अंकित नील।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: 80 लाख।
0: ओके, हेलो।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: डीएस साइंस एकेडमी वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी FCI गोडाउन रोड गंगापुर सिटी नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
3: क्या है सर आपका?
4: बिल्लू भाई ठाकुर
3: से बात कर रहे हो?
4: गला
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
4: तुझे देखा तो जाना सनम।
3: कौन सा सर?
4: तुझे देखा तो जाना सनम।
3: ओके सर, सुना रहे आपके सर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS, आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: DS कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, IAS या RAS, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
4: दोस्तों, वक्त हो चुका है 11:22 का। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो DS पर।
5: राधे राधे, नाम क्या है आपका?
6: मेरा नाम संता जाता हूँ, मेरी बाटका से बोल रही हूँ दीदी।
5: हाँ दीदी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
6: मुझको गाना सुनना है आया आया डरिया में कोई चोर आया।
5: ओके दीदी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवार का

0: हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मैं आयुष पागल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
1: मिर्जापुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बेरन।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हेलो मैम।
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका? हेलो हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: आयुष।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर? सर कौन?
1: टेंशन
0: टेंशन

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है सर आपका?
1: राजकुमार बोल रहा
0: हूँ। कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: गाना हमको सुनना चाहिए दुनिया ने बनाने वाले ने क्या चीज बनाई है लड़की।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परिवार
2: दुनिया

कोई लाल रुमाल लगाता है और कोई लंबे बाल बढ़ाता है, लड़की का मन ललचाने को कोई मोटर कार दिखाता है, कोई सजता

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: कोमल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर दीदी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: शीशे की उम्र प्यार की।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश परिगा।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी मैम, नाम नाम सालिम खान। अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम सलाम सर, कहाँ से बात कर रही?
0: लोगों कॉलोनी गंगापुर से। थी
1: कौन सा गाना सुनना था?
0: खाने के बोले देख लिया सारा जहाँ सजना।
1: ओके सर, सुना
0: अभी लगाना है।
1: ठीक है सर। हेलो।

0: हेलो।
1: हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मैम राजवीर मीणा।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं सोए माधु से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: मैम बेरन।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। परेगा

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अरुण मीना।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: घर से।
1: कहाँ से?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मासूम शर्मा।
1: वो किसा सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करेगा?

0: हाँ जी, हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: शेर सिंह मीना।
0: कितनी बार करोगे? नाम क्या है आपका?
1: शेर सिंह मीना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: नशे का गाना।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: स्कॉर्पियो।
0: ओके।
2: वेखा यादा कुलियां विच हवावां दे, अज भी कंडे चुगदा तेरिया रावां दे, तेनू फिर तो खुश वेखन ले आया हाँ। इश्कां नू मैं लेखे लाता सावां दे, इश्कां नू मैं लेखे लाता सावां दे।

0: नमो वामनवार।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: वामनवार।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: रहे छेड़े से फिर भी जन्मा सुन।
1: कौन सा सर?

0: हेलो
1: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
0: मेरा नाम मंदराज है।
1: कहाँ से बात करो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: जन्म जन्म दो साथ।

0: हेलो मैम।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: अजय कुमार मीणा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: मैं सतरंगा तेरा इश्क है पिया।
1: कौन सा सर?
0: सतरंगा तेरा इश्क है पिया।
1: ओके सर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 11:59 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: वीक पता नहीं कि मैं वापस आऊंगा कि नहीं, बट इफ आई डोंट कम बैक दोबारा शादी मत करना।
1: रेडियो डीएस सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
3: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
4: Hello.
5: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: देवा गुजर।
5: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर सिटी।
5: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
4: मोहब्बत में तेरी, आशिकी में तेरी।

0: क्या है सर आपका?
1: श्लोक सिंह राजावत।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं गंगापुर से।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: सियाही चैप्टर टू।
0: कौन सा सर?
1: सियाही चैप्टर टू।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर। ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत धन्यवाद।

तेरे बिना मेरी जिंदगी एक अधूरी कहानी थी, उसका मैं आज आखिरी पन्ना लिख रही हूँ।

0: हेलो
1: हमारे कहना है। हेलो
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम है बंटी गुजर। काम हाबीपुर मैडम, हाबीपुर।
0: हाँ जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: जग कबूतर मेरे सजन सत्ता कह देना।
0: कौन सा सर, थोड़ा आवाज तेज बोलो।
1: जग कबूतर मेरे सजन सत्ता कह देना।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना।

रखे हैं, आज तक हमने ये दरवाजे खुले रखे हैं। हम पे क्या गुजरी बताया ना बताएंगे कभी, कितने खत भी तेरे नाम लिखे रखे हैं।

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: जी लक्की।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
0: धुरंधर टू आरी आरी।
1: वो किस तरह सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा ना।

0: असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: डीएस साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेरा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावर और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, डीएस के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। डीएस साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
3: गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, 1 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाई। सब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नहे तराने 89.6 रेडियो डीएस।

0: यू नो व्हाट,
1: मुझे ना लगता है कि उसे सब कुछ बता देना चाहिए. आई मीन शी इज रियलाइज्ड, शी रियली लव्स यू मैन.
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे.
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग. 89.6 पे रेडियो DS.
4: दोस्तों वक्त हो चुका है 1:05 का. दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री सेल्सियस. आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम नए तराने. दोस्तों नए तरानों के बीच में बातें करते हैं. बरसात के मौसम में हमें अपने हाथ

दोस्तों बरसात के मौसम में हमें अपने हाथ पैरों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एक रोग होता है उसको बोलते हैं फंगल इन्फेक्शन, जिसे दाद या एलर्जी फुट लगातार नमी रहने से फंगस बढ़ जा लगने लगता है। उंगलियों के बीच में खुजली वे लालपन वे सफ़ेद त्वचा में बदबू हो सकती है। बैक्टीरिया संक्रमण, यदि पैरों में कटे या खरोच और गंदा पानी लग जाए तो वे संक्रमण रोग हो सकता है। इससे सूजन, दर्द और

सर्दियों के मौसम में हमारे ये रोग जरूर होता है, क्योंकि गंदे पानियों की वजह से, गंदे पानियों में गंदगी के संपर्क में आने से त्वचा पर जलन, खुजली और चक्कर चेतक हो सकते हैं। और गर्मियों के बरसात के मौसम में नाखूनों में फंगस जैसे लंबे समय तक गीले जूते ना पहने और नाखून पीले वे मोटे कमजोर हो सकते हैं। इस रोग से बचने के लिए बरसात के गंदे पानी में अवश्य रूप से ना चले। घर में आने के बाद पैरों को साफ पानी से धोकर साबुन लगा के धोए, पैरों को अच्छी तरह सुखाए, खास कर उंगलियों के बीच के रोज साफ और सूखे हुए मोजे पहने। गीले जूते दोबारा पहनने से उन्हें पूरी उंगलियों में वही रोग

चप्पल या सैंडल ही पहने, किसी भी व्यक्ति के तलवे में मोजे या जूते का ना उपयोग करें। पैरों में कटे या घाव हो तो उस पर साफ रखें और पट्टी कर देंगे। सुनते हैं नए तराने कार्यक्रम 89.6 रेडियो DS पर।

फर्जी बैंक कॉल केवाईसी अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, क्यूआर कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशिमीना एवं DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी।

दोस्तों वक्त हो चुका है, दो बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम नए तराने। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी याद 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: दोस्त वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक।
1: ऐसे हाल में जो तुम जाओगे
0: दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।
2: पल देसी जाना नहीं, सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस।

वक्त हो चुका है 3:44 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 36 डिग्री। साल से आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त इशी मीना की तरफ से DS साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। OTP पूछना, फर्जी बैंक कॉल, KYC अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, QR कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झांसे से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना OTP, ATM पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बनें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो DS 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।

0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी जनहित में जारी रेडियो दोस्त ऋषि मीना की तरफ से डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी साइबर ठगी से बचें, सावधान रहें। नमस्कार दोस्तों, आजकल साइबर ठग नए नए तरीके अपनाकर लोगों को ठगी का शिकार बना रहे हैं। ओटीपी पूछना, फर्जी बैंक कॉल, केवाईसी अपडेट के नाम पर लिंक भेजना, क्यूआर कोड स्कैन करवाना, लॉटरी और इनाम का लालच देना, फेक जॉब और ऑनलाइन निवेश के झान से सोशल मीडिया हैकिंग, व्हाट्सएप पर फर्जी रिश्तेदार बनकर पैसे मांगना, ये सभी साइबर ठगी के तरीके हैं। याद रखें, अपना ओटीपी, एटीएम पिन, बैंक डिटेल और पासवर्ड किसी को ना बताएं। अनजान लिंक पर क्लिक ना करें। कोई भी संदिग्ध कॉल आए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन 930 पर शिकायत करें। जागरूक बने, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी, रेडियो दोस्त इशी मीना एवं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी।
0: 89.6 पे रेडियो डीएस,
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:03 का। दोस्तों हमारे स्टूडियो कॉलिंग लाइन खालू दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन खुल चुकी है। आप कॉल करें और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6378024475। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6378024475। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

दोस्तों वक्त हो चुका है 4:20 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: DS साइंस एकेडमी, वेयर योर ड्रीम्स टर्न इनटू रियलिटी। 12th बोर्ड साइंस 2026 शानदार नतीजे। टॉपर मानस शर्मा 98% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र में छाया। हमारी सफलता की मिसाल 95% से अधिक 19 विद्यार्थी, 90% से अधिक 110 विद्यार्थी, 85% से अधिक 251 विद्यार्थी, 80% से अधिक 407 विद्यार्थी। हमारे चमकते सितारे 95% प्लस वाले आरजू जरेड़ा, यशांसी सिंगल, अदिति मीना, अश्विनी दोई, सोनम मीना, शुभम मीना, खुशी गर्ग, आकाश कुमार मीना, प्रियांशु कावत और इसके अलावा भी बहुत सारे छात्र। एग्जाम कोई भी हो, DS के विद्यार्थी हमेशा अनबीटेबल रहते हैं। अब तुम्हारी बारी है अपनी सफलता की नई कहानी लिखने की। एडमिशन ओपन सेशन 2026-27 क्लास 9, 10, 11, 12 विद साइंस स्ट्रीम। DS साइंस एकेडमी, FCI गोडाउन रोड, गंगापुर सिटी, नियर सैनिक नगर एंड नसिया कॉलोनी। संपर्क करें 8005598377। इसके अलावा 9983413111। इसके अलावा 9462744762।
3: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टोन करें 89.6 रेडियो डियाज गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त RJ पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमारे पास आई है श्री महावीर जी से। श्री महावीर जी से हमें कॉल किया है देवेंद्र चौधरी जी ने। सुनते हैं इनकी फरमाइश पर ये गाना 89.6 रेडियो DS पर।

0: आरवी दीदी सर नमस्कार।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: मैं आपका जाना पहचाना ब्रज रेडियो श्रोता मित्र शारदा प्रसाद प्रजापति श्री राधा सिटी मथुरा से वार्तालाप कर रहा हूँ। दीदी आप कैसी हैं? मौसम यहाँ मथुरा में अच्छा हो गया है, तापमान 32 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास में है। हाँ। आकाश में बादल छाए हैं, हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है।
1: तो यहाँ पर भी हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा चल रही है, 35 डिग्री सेल्सियस चल रहा है, बारिश नहीं आई, मौसम ठंडा हो रहा है थोड़ा।
0: जी तापमान गिर गया है और मौसम थोड़ा नरम हो गया है।
1: हाँ जी बताइए कौन सा गाना सुनना चाहोगे आज?
0: दीदी आज आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ, गाने के बोल हैं हमारे हिजड़ा में नाचे मोर थैया थैया थैया।
1: ओके सर सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत

0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: सर नमस्ते। सर नाम क्या है आपका?
0: ऋषभ शर्मा।
1: कहाँ से बात कर रहे हो ऋषभ जी?
0: करौली से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: ये रूट्स।
1: रूट्स?
0: यस मैम।
1: ना सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: वेलकम मैम।

0: हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: जी मैम, मेरा नाम अरहम खान है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: मैं लाटा गली से बात कर रहा हूँ मैम।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: हम तेरी कुड़माही के दिन आ गए।
0: कौन सा?
1: तेरी कुड़माही के दिन आ गए।
0: ओके सर।

0: हेलो
1: नमस्ते नाम क्या है आपका?
0: नमस्ते राम राम।
1: राम राम सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: मेरे महबूब तेरे दम से।

0: हेलो हेलो
1: नमस्कार हो
2: मैं रहूं या न रहूं मेरी पापा कहती है।
3: मेरा नाम जिगर सिंह।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
3: मैं उदय मोड़ से बात कर रहा हूँ।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: यार आप तेरी यारी को।
0: ओके हेलो

0: हेलो
1: नमस्कार
0: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका? हाँ
1: नाम आमीन साहब पिदौदिया।
0: जी, कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: दिल सच्चा और चेहरा झूठा।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: लक्ष्य।
0: कहाँ से बात कर रहे हो लक्ष्य?
1: करौली साइड।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: ब्लैक राइड।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: लिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडीइंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन DS आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ DS इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइन स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कांसेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक JEE एंड NEET। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।

0: हेलो,
1: निकिता
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: टोटे टोटे हो गया।

0: हेलो।
1: हाँ जी मैम, क्या है आपका?
2: एफएम से बोल रहे हैं मैडम।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी से मैडम।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
2: मैडम क्रांति पिक्चर का गाना सुनेंगे, मनोज कुमार का।
0: गाना के बोल
2: है?
0: गाने के बोल सर।
2: क्रांति, देश में आएगी क्रांति।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।
2: DS साइंस एकेडमी

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है।
2: हेलो, हाँ जी मैम, क्या है?
3: गुलशन,
2: कहाँ से बात कर रहे?
3: गंगापुर सिटी।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: बोल बोल।

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: वंदना।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: सुंदरपुर सिटी।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: मॉर्निंग बागा में बोला आधी रात।
0: ओके, सुना रहे।

0: हेलो
1: निकिता,
0: कहाँ से बात ओके हेलो
1: हेलो,
0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मीनाक्षी।
0: कहाँ से बात कर रहे
1: हो? रेलवे स्टेशन।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
1: हरियाणवी सॉन्ग है, रसगुल्ला खुआ दे मेरे हाथ।
0: हेलो।

दोस्तों वक्त हो चुका है 5:18 का। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस और आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाई सिटी 9.6 रेडियो डीएस पर।

0: 96.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो डीएस 89.6।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

0: गंगापुर सिटी की धरकर
1: देखो आप सज धज के ऑफिस के लिए निकल चुके हो, सलाम है आपको, लेकिन मेरे लिए साल का सबसे मुश्किल समय, क्योंकि मौत आ जाती है इस फैसले को करने में कि आज नहाऊं या नहीं नहाऊं। अरिजीत सिंह की आवाज में आपने गाना सुना है, लिरिक्स लिखा अमिताभ भट्टाचार्य ने, कॉम्पोजिशन सचिन जिगर ने किया, गाने का नाम था फिर और क्या चाहिए। चाय चाहिए गर्मा गर्म, लेकिन इस वक्त चाय लेने तो मैं जा रहा हूँ, पर आप कहीं मत जाना, चार गाने आपके लिए बैक टू बैक
0: गंगापुर सिटी की धरकर।

0: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव लाने की जो प्रेरणा होती है ना, हमारे आसपास के लोगों से ही मिलती है। मैं हूँ आरजी खुशी। हर सुबह की तरह आज भी हम लोग कोशिश करेंगे कि अपने जीवन को थोड़ा सा बेहतर बना सके, और इसकी शुरुआत होती है आज से, अभी से, इस पल से। तो क्या किया जाए आज ऐसा कि हमारा पूरा दिन बेहतर हो सके? देखो, हो सकता है कि आप अपने आप में अच्छे बदलाव करना चाहते हो, लेकिन आपके आसपास कोई ऐसा ना हो जो आपके उन बदलाव में आपका साथ देना चाहता हो, तो आप क्या करेंगे? देखिए, आपके पास में कुछ और हो ना हो, लेकिन आपके हाथ में मोबाइल फोन जरूर होगा, और उस मोबाइल फोन में इंटरनेट भी होगा, और उस इंटरनेट पे अगर आप कुछ अच्छे वीडियोस देखने शुरू करेंगे, कुछ अच्छी कथाएं सुननी शुरू करेंगे, कुछ पॉजिटिव चीजें सुननी शुरू करेंगे, तो आपके जीवन में बड़े बदलाव आ सकते हैं। तो अब से हमें कभी भी ये नहीं सोचना है कि मेरे आसपास की जो स्थिति है वो विपरीत है। हमारे पास में कुछ होना हो, मोबाइल फोन तो है ही ना। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में। 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
1: कॉफी आप में से कितने लोगों को पसंद है? मैं हूँ आरजी खुशी। शायद बहुत सारे लोगों को पसंद है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर हम कॉफी ज्यादा पीते हैं ना, तो हम परेशान से हो जाते हैं। उसमें जो कैफीन होता है वो एंजाइटी बढ़ाता है, यानी कि हम चीजों को ज्यादा सोचने लगते हैं और जबरदस्ती ओवरथिंकिंग में चले जाते हैं, यानी कि एक ही बात को बहुत ज्यादा सोच सोच के खुद में ही परेशान होने लग जाते हैं। जी हाँ, कॉफी में एक ऐसी चीज है जो इस चीज को भी पैदा कर देती है हमारे अंदर। लेकिन कॉफी भी पीनी है और खुद को अच्छा भी फील कराना है, तो क्या करें, उस कॉफी में एक चम्मच घी डाल दें। जी हाँ, आपको बताना चाहूंगी कि घी कॉफी आजकल बहुत चलन में है। इससे होता क्या है, जो कॉफी में कैफीन होता है ना, जो एंजाइटी बढ़ाता है, जो थोड़ा सा हमें परेशान कर देता है, उसकी मात्रा कम हो जाती है। तो आप कॉफी को भी एंजॉय कर पाते हैं और उसकी जो बुरी चीजें हैं उनसे भी दूर हो जाते हैं। मैं हूँ आरजे खुशी, लौट कर आती हूँ थोड़ी देर में।
0: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
1: इस सीजन में यानी कि सर्दियों में अगर आपने फल खा लिए ना तो पूरा साल आपका बहुत बढ़िया जाएगा। मैं हूँ आरजे खुशी। सर्दियों में इतनी सारी सब्जियां मिलती हैं, इतने सारे नए नए फल आते हैं और इनको हमको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, यानी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। फलों की हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि वहीं से हमें जो जरूरी तत्व होते हैं हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वो मिलते हैं। और मान लीजिए कि आपका शरीर का वजन जो है वो 60 किलो है तो कम से कम आपको दिन के 600 ग्राम फल खाने ही खाने चाहिए, ऐसा आयुर्वेद कहता है। इसलिए अगली बार जब भी फल कोई आपके सामने आए तो उसको मना ना कीजिएगा, एक बार सोचिएगा कि क्या ये फल मैं आज खा सकता हूँ या खा सकती हूँ। तो अपनी सेहत का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मैं हूँ आरजे खुशी, अभी के लिए यहाँ से चलती हूँ, मिलूंगी कल इसी पते पर इतने ही बजे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: रेडियो DS
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: पसंद करना चाहिए।
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो DS
2: समझना चाहिए गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस
2: बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी के घर पर
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी एस।

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी एस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो DS
2: पसंद मचना चाहिए गाना
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: कुछ नहीं चलेगा।
1: अरे अरे लेकिन लेकिन मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, क्या क्या करती हो? अच्छा अच्छा सुनो, एक बार एक बार लेकिन एक बार

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी की धड़कन
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धरतर रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: डीएस
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: डीएस
3: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डी एस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डी एस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: डीएस।
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

था गुलशन पर बरसूं, एक शौक के दामन पर बरसूं। अरमान था गुलशन पर बरसूं,

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन
2: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस
0: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6
2: गंगापुर सिटी की धड़कन
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो
2: डीएस
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: समझना चाहिए गाना
3: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: मैजिक रेडियो डीएस 89.6
1: गंगापुर सिटी की धड़कन रेडियो डीएस
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस

0: मैजिक रेडियो DS89.6
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

0: मैजिक रेडियो DS 89.6
1: यहाँ बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।

हेलो दोस्तों, आपने ट्यून 99.6 रेडियो डीएस कांगा फोर सिटी का तड़का में आपका रेडियो दोस्त आकाश और अब करते हैं कार्यक्रम का समापन और मिलते हैं सुबह प्रातः 5:30 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।